कार्यक्रम भजन दीपाञ्जली प्रत्येक सोमबार सुमधुर भजन का साथ में बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। यस कार्यक्रम का प्रायोजक उच्च स्तरीय प्रविधि द्वारा स्वदेशमै निर्मित चाँदी का हर एक प्रकार का सामग्री का लागि प्रसिद्ध सिल्वर स्टेट धर्मपथ न्यू रोड काठमाडौँ। कार्यक्रम भजनांजलि प्रत्येक मंगलबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म अवश्य सुन्नुहोला केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। प्रत्येक मंगलबार बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सर्व मांगलिक कामनाका साथमा कार्यक्रम सर्व मंगलम सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz मा। एफएम अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रमहरू प्रायोजन गर्न अथवा यहाँको सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन गर्न चाहनुहुने महानुभावहरूले 9841289820 मोबाइल नम्बर 9841289820 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साँझ 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुमधुर भजनहरूको सन्ध्या कार्यक्रम भक्ति सन्ध्या सुन्न सक्नुहुनेछ केवल एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8 MHz।

झीले यहाँ सुंदर यूनुंचा एफएम पठात मो जोटी जोटी अध्यात्म ज्योति।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: श्री इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यहाँ को विश्वासिलो र भरपर्दो वित्तीय सहयात्री। हाम्रा विशेषताहरू निक्षेपमा आकर्षक ब्याज दर, सरल र सहज तरिकाले कर्जा प्रवाह, देशै भरि रहेका शाखाहरूबाट निशुल्क एबीबीएस कारोबार सुविधा, सी आसबा सुविधा, कारोबारको जानकारी दिन एसएमएस अलर्ट सुविधा, निशुल्क चेक बुक तथा सम्पूर्ण रेमिटेन्स सेवा। केन्द्रीय कार्यालय श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली बजार गुर्जुको चौक काठमाडौँ।
2: टुगेदर वी डेलिभर।
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

सज्जनों, शक्ति और शिव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति में शिव है और शिव में शक्ति है। शक्ति और शिव ही इस संसार के जन्म दाता हैं। शक्ति और शिव दोनों ही आदि देव हैं। इनकी आराधना से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जीवन हर प्रकार के सुखों से भरपूर होता है। हृदय में भक्ति की ज्योति जलती है, मन के विचार निर्मल हो जाते हैं। पिछले जन्म और वर्तमान जन्म के दुष्कर्म, पाप और शाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव आशुतोष कह जाते हैं। ये नाम लेने मात्र से क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। शिव कितने बड़े करुणा सागर हैं, इनसे बड़ा कोई दानी और दाता नहीं है। आदि शक्ति जगदम्बा ममता की खान है, हृदय करुणा से भरा हुआ है, सारे संसार को अपनी संतान की तरह देखती है। माँ शक्ति और वैभव की सबसे बड़ी दानी है। आज हम इन्हीं शक्ति और शिव के विवाह की कथा सुनाएंगे।

ब्रह्मा जी की बात सुनकर सारे देवता गण सोच में पड़ गए। सोचने लगे, दक्ष सुता उमा भस्म हो चुकी है, शिव समाधि में लीन है, बिना शिव के विवाह किए पुत्र कहां से होगा। तारकासुर ने तो देव लोक छीन कर हम लोगों को दर दर भटकने के लिए बाध्य कर दिया है। संसार भी उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, आदि शक्ति जगदम्बा की उपासना से ये समस्या हल हो सकती है और उसके लिए राजा हिमाचल और रानी मैना उचित पात्र है। आप लोग उनसे निवेदन कीजिए, आदि शक्ति यदि कन्या के रूप में उनके घर जन्म लेती है

बाद दूसरी बार राजा हिमाचल के घर सती मैना की कोख से जन्म लिया। त्रिपुर सुंदरी दिव्य तेज कन्या ने सबका मन मोह लिया। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की और देवी की स्तुति की। समाचार सुनकर नारद मुनि पधारे। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और उचित आसन देकर उन्हें बैठाया। राजा रानी ने कन्या के दर्शन कराए और कहा, मुनिवर, हस्तरेखा आपका विज्ञान है, कृपया इसकी हस्तरेखा देखकर इसके गुण दोष बताइए। नारद मुनि ने कन्या का नाम पार्वती रखा, क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय के घर पैदा हुई थी। उसके बाद लकीरें देखकर बताना प्रारंभ किया।

नारद मुनि ने कहा, राजन कन्या गुणों से संपन्न है, किंतु एक दोष बहुत बड़ा है। इसका विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो जोगी होगा। वो औघड़ होगा, उसकी वेशभूषा अजीब होगी, गले में मुंड माला धारण करेगा, कपाली होगा। ये अटल सत्य है, इसे विधाता का विधान जानो। राजा रानी बहुत दुखी हुए। राजा ने पूछा, मुनिवर क्या इस दोष के मिटने का कोई उपाय है? नारद जी ने कहा, उपाय है, यदि इसका विवाह शिव शंकर से कर दिया जाए तो सारे दोष गुण में बदल जाएंगे, और भोलेनाथ में वो सारे गुण हैं जो इसकी हस्तरेखा बता रही है।

महाराज भोलेनाथ महादेव हैं, उनके सारे दोष सृष्टि के लिए कल्याणकारी है। जैसे

0: बचाओ FM अध्यात्म ज्योति
1: नहीं पड़ेगा। जाओ पार्वती से कहो कि वो शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करे। रानी एक बात मत भूलो, एक बार चंद्रमा में अग्नि पैदा हो सकती है किंतु नारद की बात असत्य नहीं हो सकती। रानी मैना बेटी पार्वती के पास गई, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। माँ को देखते ही भवानी माँ के मन की पीड़ा को समझ गई। पार्वती जी ने कहा, माँ मैंने एक स्वप्न देखा। एक गौर वर्ण का ब्राह्मण मुझसे कहने लगा, पार्वती नारद मुनि की बात सत्य है, तुम शिव जी की तपस्या करो, तप की बहुत बड़ी महिमा है।

पार्वती ने कहा, माँ मुझे शिव की तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। मैं शिव की घनघोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगी। तुम निश्चिंत रहो, मुझे अपना आशीर्वाद दो माँ। पार्वती तपस्या करने चली गई। माता पिता उन्हें रोक नहीं पाए। हिमालय के वन में कई हजारों साल घनघोर तप किया। पार्वती सूख कर कांटा हो गई। शरीर का मांस सूख गया, केवल हड्डियां बची थी। भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को शिव प्रेम की परीक्षा लेने पार्वती के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने आकर देखा और पूछा।

मुनियों ने कहा, देवी ये नारद मुनि कभी किसी को सही मार्ग भी बताए हैं? अरे उन्होंने दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया, वो बेचारे लौटकर घर का मुंह नहीं देख सके। नारद की बात जिसने मानी वो भवन छोड़कर भिखारी हो गया। तुम्हें सही रास्ता नहीं बतलाया। शिव तो निर्गुण निर्लज अर्धनग्न कुएशधारी कपाली औघट बिना घर बार का दिगंबर है। उसने अपनी पहली पत्नी दक्ष सुता उमा को प्रेरित करके दक्ष के ही यज्ञ के हवन कुंड में भस्म करवा दिया। अब निश्चिंत होकर घूमता है, भीख मांगकर खाना खाता है और सुख की नींद सोता है। ऐसे व्यक्ति में तुम्हें कौन सा गुण दिखाई पड़ा? कौन सा सुख है उसके पास जिसके लिए तुम इतनी घनघोर तपस्या कर रही हो? तुम्हारे लायक तो शिर सागर वासी कमलापति हैं। उनसे तुम्हें सारे सुख मिलेंगे, उनकी लीला तो वेद भी गाते हैं। कहो तो बात चलाऊं?

पार्वती जी ने कहा, मुनियों मान लिया शिव अवघड़ हैं, शिव दिगंबर हैं, विष्णु गुणों से भरपूर हैं, किंतु ये तो मन की बात है। मन को जो भाग गया अब तो प्राण उसी पर निसार होगा।

भवानी की बात सुनकर ऋषियों को अपार हर्ष हुआ। उन्होंने जगदम्बा को प्रणाम किया और जय जयकार करते हुए चले गए और जाके राजा हिमाचल को पार्वती को लाने के लिए भेजा। इधर आकाशवाणी हुई, देवी तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, तुम ऋषियों की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, शिव तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, अब तुम हट मत करना, माँ बाप के साथ घर वापस लौट जाना। पार्वती अति हर्षित हुई।

पार्वती जी राजमहल में शिव के ध्यान में मग्न थी। भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, देवी हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी होगी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। पार्वती की आंखों से अश्रु की धारा बह निकली, वो चरणों पर टूट कर गिर पड़ी। शिव जी ने उन्हें उठाया और कहा, समय की प्रतीक्षा करो, और फिर अंतर ध्यान हो गए। कैलाश जाकर भोलेनाथ फिर समाधि में लीन हो गए।

0: किलाउन नपर्ने जर्मन प्रविधिबाट बनेको उत्कृष्ट उत्पादन ऊर्जा दाल र चामल, ऊर्जा दाल चामल स्वादले खाइन्छ, सधैँ स्वस्थ भइन्छ।
1: एसई सकियो, अब रमाइलो सुरु भयो।
2: नेपाल टेलिकमले ल्यायो विशेष एसई अफर, मात्र रु 20 मा प्रिपेड सिम कार्ड, रु 9.80 रुपियाँ ब्यालेन्स सहित 30 दिन सम्म दैनिक पाउनुहोस् 20 मिनट भोइस, 500 MB डेटा, 10 SMS।
1: अझै रमाइलो, रु 50 वा सो भन्दा बढी रिचार्ज गर्दा 50 MB बोनस डेटा, 50 मिनट बोनस भोइस, 50 SMS बोनस।
2: यो योजना 2082 चैत्र 26 गतेदेखि 2083 असार 26 गते सम्म।
1: थप जानकारीका लागि 1498 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
3: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
4: नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडका कर्जा ग्राहकहरूलाई ब्याज छुट सहित कर्जा चुक्ता वा नियमित गर्न आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना। यस ब्याङ्कबाट कर्जा उपभोग गरी विक्रमसम्म 2079 साल चैत्र मसान्त अगाडि खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका बकेउता सावाहरू 1 करोडसम्मका खराब तथा अपलेखित कर्जा ग्राहकहरूलाई विक्रमसम्म 2083 साल आषाढ मसान्तभित्र योजना अनुसार ब्याज छुट सुविधा सहित कर्जा चुक्ता गर्ने अवसर प्रदान गरिएकोले यस ब्याङ्कको नजिकको शाखा कार्यालयमा जानुभई ब्याज छुट सुविधाको लाभ लिनुहुन अनुरोध गर्दछौ। शर्त तथा देशहरू लागू हुनेछ।
3: समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क।
5: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।
6: देवलोक और पृथ्वी लोक को अपने अत्याचारों से त्रस्त कर दिया। उसके आतंक से आकाश और धरती दोनों कांप गए। देवताओं के सब्र का बांध टूट गया। देवताओं ने फिर ब्रह्मा जी से सलाह लिया। देवताओं ने कहा, पितामह, शिव भोले तो समाधि में लीन हैं। उनकी समाधि कैसे टूटे? आप शीघ्र कोई रास्ता निकालिए। शिव की समाधि टूटे, उनका विवाह पार्वती से कराया जाए। यदि शिव पुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। हम लोग कभी देवलोक में नहीं जा सकेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग मिलकर कामदेव का आह्वान कीजिए। कामदेव ही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

देवताओं, शिव से बैर करना उचित नहीं है। शिव का विरोध करने वाला संहारकारी के प्रबल क्रोध का भागी होता है। आप लोग जन कल्याण की भावना से ये कार्य कर रहे हैं, मैं अवश्य आपका साथ दूंगा, किंतु ये निश्चित जानिए कि मैं जीवित वापस नहीं लौटूंगा। मैं शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करता हूँ। कामदेव इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। सारे देवता हर्ष और उल्लास से भर गए। कामदेव ने अपनी माया फैलाई। चर अचर योगी यति पशु पंछी सभी काम पीड़ित हो गए। वसंत झूम उठा, फूल खिल गए, शीतल सुगंधित हवाएं बहने लगी, नदी तालाब सब उमड़ पड़े।

सारे तपस्वी योगी यति सब काम के वश में हो गए। तपस्वी लोग ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमें काम से बचाओ स्वामी। इधर कामदेव ने फूलों का धनुष बाण बनाया और शिव समाधि के पास पुष्प लताओं में छुपकर अवसर देखने लगा। कामदेव ने 5 फूलों के बाण शिव के कान के पास मारा। कामदेव की माया इतनी प्रबल थी कि शिव की समाधि टूट गई। आंखें खुली, शिव ने चारों ओर देखा, कौन दुष्ट ये कुचेष्टा कर रहा है। फूलों की झाड़ियों में कामदेव दिखाई पड़ा। शिव का क्रोध जागा, कामदेव भय से कांपने लगा। भोले का तीसरा नेत्र खुला, उसकी ज्वाला में कामदेव भस्म हो गया।

महासती रति के रुदन से भोलेनाथ करुणा सागर का हृदय भर आया। उन्होंने रति को धीरज बंधाया और कहा, महासती, तुम्हारे पति कामदेव ने अशोभनीय और अक्षम्य अपराध किया था, उसे दंड मिलना ही था, किंतु कामदेव की काया भस्म हुई है, उसकी आत्मा अमर है। अब वो बिना शरीर के अनंग होकर लोगों में व्याप्त होगा और अनंग कहा जाएगा। द्वापर में जब कृष्ण जी अवतार लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा, उसी समय फिर तुम उसे पति के रूप में पाओगी। तब तक तुम सतीत्व की रक्षा करते हुए तपस्या करो।

अवघड़ नाथ की वेशभूषा देखकर देवताओं की स्त्रियों ने व्यंग कसा। इस वर लायक दुल्हन संसार में नहीं है, बड़ी कठिन तपस्या के बाद ऐसा दूल्हा मिलता है। आज अपने दूल्हे को देखकर दुल्हन भी धन्य हो जाएगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बारात में चल रहे थे। विष्णु जी ने व्यंग से कहा, भाई दूल्हे के अनुरूप हम बाराती नहीं हैं। आप लोग अपनी अपनी अलग समाज बनाकर चलिए, हम लोग परायपुर में जा रहे हैं, वहाँ के लोग देखेंगे तो हंसेंगे। भोलेनाथ विष्णु का व्यंग समझ रहे थे, मुस्कुरा दिए। भूतनाथ के भी साथी संगी बारात में साथ चल रहे थे। भोलेनाथ के साथियों को देखिए,

ये शिव की बारात थी। किसी का एक मुख था तो किसी का बीसों, किसी का सिर धड़ से गायब था तो कोई बिना पांव के चल रहा था। हड्डियों के ढांचे हाथ हिलाते चल रहे थे, किसी का मुंह सुअर का तो किसी का सियार का।

0: Flashback, Flashback, Flashback, Flashback.
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

0: गोल्ड पैलेस शुक्रपथ न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: वेलकम टू श्रेष्ठ टेलरिंग रेडी मेड या शूटिंग शर्टेज मलाई ट्रैक शूट चाहिए
2: वो मलाई फ्रॉक
3: मलाई पनी सूट
4: वो
5: अनि मलाई

मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की कसम।

हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल, प्यार की कसम कमाल हो गया।

0: American Hive.
1: If you ask your English, D.
2: कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है
3: थोड़ी सी मेरे लिए भी छोड़ो।

0: से बुला के रस्ते में धोखा देती हो।
1: अच्छा चलो ठीक है, कुछ भी हो प्री है।
2: वादा रहा ना।

राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैं भरी।

0: गोल्ड पैलेस सुक्रपत न्यू रोड काठमांडू फोन नंबर 42 43 736।
1: गड़बड़ गड़बड़ पेट गड़बड़ जब पेट गड़बड़ सब तिर हड़बड़।
2: कब्जियत गैस अपच ये समस्या साना जस्ता लाग्छन् तर दिन भर को जीवन लाई अस्त व्यस्त बनाउँछन्। मैले धेरै उपाय अपनाए तर स्थायी राहत पाउन सकिन। अन्तत मैले रोजे एसआर लैक्स 16 प्राकृतिक तत्व को संयोजन ले बने को यो लैक्सिटिव ग्रैन्युल्स ले अब मेरो पेट लाई सहज बनाएको छ। बिहान को शुरुआत हल्का महसूस संग हुन्छ र दिन खुशी र शान्तिपूर्ण। एसआर लैक्स प्राकृतिक र भरपर्दो समाधान कब्जियत ग्यास अपच र अम्ल पित्त को लागि। मेक योर डे हैप्पी एंड जॉयफुल पेट स्वस्थ जीवन सरल। एसआर लैक्स नजिकको फार्मेसी वा आयुर्वेदिक स्टोरमा उपलब्ध छ।
3: स्वेटर ज्याकेट कति लगाउन सकेको होला, अलि हलुका भएर हिँड न है।
4: जाडो भएपछि लगाउनु परेन त?
3: खै मलाई त लगाउनु परे छैन त, मैले जस्तो थर्मोकोल लगाउन न्यानो भइहाल्छ नि।
4: ह्या, एक दुई दिन मात्र त हो नि, पछि पछि त कामै गर्दैन नि।
3: मेरो जस्तो पिक्सी चार्जर ब्रान्डको लिउन, कहिल्यै मन चिसो बनाउनु पर्दैन, जहिले जिउ तातो राख्छ। पिक्सी चार्जर थर्मोकोल लगाऊ, जाडो फगाऊ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: One oh four eight.

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई में सदैव।
1: Four, eight.

0: சாவேல் சுச்சேபாடி.
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा व उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनु हुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820 मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने.

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

भजो राम भजो भाई राम भजन हीन जन्म सदा दुखदाई राम राम राम भजो राम भजो।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: श्रेष्ठ टेलरिङ,
2: चिर परिचित, यहाँ श्रेष्ठ टेलरिङ।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति, शांति रेडियो।

0: Ile yahan sunde yununca FM otatma joti joti.
1: अध्यात्म ज्योति अध्यात्म ज्योति।

0: FM अध्यात्म ज्योति शांति रेडियो
1: अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम भक्ति संध्या।

0: मंगलम अब सबै को मंगलम अब घर घर में मंगलम सबै को इच्छा पूरा गर्ने चामल मंगलम।
1: जय श्री फूड्स प्राली द्वारा उत्पादित मंगलम जीरा मसिनो चामल, मंगलम सोनम चामल, मंगलम सोना स्टीम चामल, स्वाद र संतुष्टि को लागी।